अल्लाहु अकबर या अल्लाह पूर्दी जबलु को सब दुनिया को होली मुलाम्बो जरन खेने को बस अल्लाहु अकबर या अल्लाह पूर्दी जबलु को सब दुनिया को होली मुलाम्बो जरन खेने को बस के पुकुमन तिलिबिस अम्याक मोइल फसस lo wer wer wer de ngiñu ko xew xew wi bis ak palu reere itam ak fol ko ak